एफएम अध्यात्म ज्योति को अब को प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात। नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम शुभ प्रभात में म सबनिका तिवारी अब 8 बजेसम्म मधुर भजनहरुका साथमा यहाँहरुसँग रहनेछु।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो।
1: FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनार्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
2: जे जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

0: एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजन अर्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जे जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

दशिकों में शिरोमणि हो तो मैं भी अधमों में शिरोमणि हूँ। यदि ये दोनों शिरोमणि मिल जाए तो प्यारे मेरी बात बन जाए। और इसके लिए जब मिल ही जाएंगे तो क्या होगा प्यारे, मैं निवेदन भी कर रही हूँ कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो तुम करके दिखा दो कि कभी यूं भी आ मेरी आंख में, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को भी खबर ही ना हो, कि मेरी नजर को भी खबर ही ना हो। बस एक रात नवाज दे मुझे, बस एक रात नवाज दे मुझे, फिर उसके बाद सहर ही ना हो। बस एक रात नवाज दे मुझे, फिर उसके बाद सुबह ही ना हो, फिर उसके बाद सहर ही ना हो। ये भावनाएं भी तुमसे क्यों प्यारे,

ये अभिप्सा ये उत्कंठा, ये चाहत ये उल्फत, ये मोहब्बत के मचलते जज्बात तुम्हें पुकार रहे हैं और तुम्हें आने के लिए मार्ग भी बता रहे हैं।

जब तुम इस मन को नहीं अपनाते हो तभी तो इसमें गंदगी प्रवेश कर जाती है। यदि तुम इसे अपनाकर इसी में रहने लगो तो फिर ये मन की खटकन हो ही क्यों।

तुम मक्खन के खाने वाले हो, मक्खन से भी ज्यादा तुम्हारा कोमल स्वभाव है। और मक्खन का एक स्वभाव है, यदि उसे शीत में ठंड में रख दिया जाए तो इतना कठोर हो जाता है कि यदि उसमें चाकू भी मारा जाए तो नहीं घुसता। लेकिन वही मक्खन यदि किसी अग्नि के पास रख दिया जाए

सकते हो, उनसे यदि तुम कठोरता करो तो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे चाहने वाले हैं, तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं, विरह की अग्नि में झुलस रहे हैं, और उस अग्नि के पास आकर भी तुम यदि द्रवित नहीं हुए, बहे नहीं,

कि मेरे दिल को मैं कठोर तो नहीं करना चाहता, यदि तुम कोमल चाहते तो मुझे क्या करना होगा। यारे वह भी तुम्हें बता रही है कि लोगों को कहते सुना है अक्सर, लोगों को कहते सुना है अक्सर कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन तुमसे मिलकर दिल ने महसूस किया ये पल पल, तुमसे मिलकर दिल ने महसूस किया ये पल पल, अगर तुम मिलते रहोगे

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. वो मेरे पीछे हाथ धो
1: पड़ा है, बचा ले मुझे,
0: वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, बचा ले मुझे।
2: कोई इतनी गाह क्या मिली तबीयत मचल गई, कोई इतनी गाह क्या मिली तबीयत मचल गई,
3: जरा वो मुस्कुरा दिए शमा।

0: भेल। प्यार की पकौड़ी मिट्टी बातों की भेल, थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सोंठ थोड़ा तेल। अरे बोल
1: अले वाले बेटा,
2: झूम झूम कौवा की ढोलक बजाए।
3: अरे मामा वाह।

मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल।

0: फ्लैशबैक।
1: अरे वाह मेरे मालिक, खूब है तेरे खेल, पागल सारे छुट्टे घूमे, समझदार को जेल। अरे वारे मालिक, अरे अरे, जूते को पगड़ी, पगड़ी को जूता, चदरी को गमछा, सर को पैर बताए, आंख के अंधे कमल नयन कहलाए।
2: जूते को पगड़ी, पगड़ी को जूता, चदरी को गमछा, सर को पैर बताए, आंख के अंधे कमल नयन कहलाए।
1: ऐसन बिन कपड़ा, कपड़ा बिन सन, धड़कन बिन दिल, दिल बिन धड़कन, पहले बुढ़ापा बाद में बचपन। अरे सानी धा।
0: अरे बारे मालिक।

अरे वाह मेरे मालिक, खूब है तेरे खेल, तरवालों के ऊपर मिट्टी, गधे लगाए तेल। अरे बारे मालिक, अरे अरे घर को बाहर, बाहर को घर, सड़क पे बिस्तर, लंबी लोट लगाए, पत्थर पूजे और हमको ठुकराए, तन बिन कपड़ा, कपड़ा बिन तन, धड़कन बिन दिल, दिल बिन धड़कन, पहले बुढ़ापा बाद में बचपन, मागा दे सानी धापा माँ। अरे बारे मालिक।

अरे वाह मेरे मालिक, खूब है तेरे खेल, हम जैसों के पैर में बेड़ी लंगड़ा करे कुलेल। अरे बारे मालिक, अरे अरे पाई नकौड़ी नाम करोड़ी काट की घोड़ी सरपट दौड़ी जाए, अजब अजूबा जो देखे रह जाए, कन बिन कपड़ा धड़कन बिन दिल पहले बुढ़ापा

कोजी बिना सेहरा चमक रहा चेहरा दे कोजी बिना सेहरा चमक रहा चेहरा चले हैं चले हैं चले हैं ससुर।

आए प्यार के जमाने आए प्यार के जमाने दुल्हन को मनाने दुल्हन को मनाने ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी मैं सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी दिल में यही है कुछ करके हटूंगा गोरी जी।

0: दिल सुनता है कम,
1: रखो दिल को सनम,
0: दिल सुनता है कम,
1: क्योंकि बातें हैं बलम,
0: दिलो प्यार की कसम,
1: क्योंकि बातें हैं बलम,
0: दिलो प्यार की कसम। प्यार हमेशा से है अकल गवाने वाला, फूल समझ कर झोले को उठाने वाला, आज से खेल वही जो है जल जाने वाला। आजा तू आजा,
1: अजना अजना अजना अजना, जा जा तू जा जा,
0: कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना,
2: आजा तू आजा,
1: अजना अजना अजना अजना, जा जा तू जा जा,
2: कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना।

0: गया गया गया फूल फूल मन मेरा कहीं भी सजन हो गया गया गया
1: बहके कदम कुछ हमें भी सनम हो गया गया गया गया
0: फूल फूल मन

0: गोल्ड प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ फोन नम्बर 42 43 736।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित पसिना सोच्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर
1: जेन्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्रोमर
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।
4: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
5: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
4: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स
6: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
7: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।
8: संपर्क नंबर 5320411 9802076888।
6: जेजे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
9: One oh four eight.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: One oh four eight.

खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया, तो ही खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित पसिना सोच्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्रोमर
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

कर लेके मैं बारात कभी आऊंगा दिल पे हाथ से लिख ले बात ये वादा ये रहा तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं तेरा पीछा ना ना छोड़ूंगा सो

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित पसिना सोच्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर
1: जेन्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: We'll be right back.

0: एड्रेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: मनशान्ति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: अभी आपने सुना तानी रउवा लोगन के अपन रेडियो स्टेशन FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज़

0: एड्रेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित, पसिना सोस्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्रोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।
4: FM AJ 104.8 MHz।

0: Weekend Classic Radio Show.
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ और आज एक नया दिन है, एक नया शो है। 90s के दौरान यू नो बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में फैमिली, प्यार, ट्रेडिशन और कल्चर पे बना करती थी। उस टाइम पर बॉलीवुड वेंट ग्लोबल एंड रीच्ड वाइडर ऑडियंस, जिसकी स्टोरी लाइंस बहुत ही चैलेंजिंग होती थी। और तब का वो समय था जब फीमेल ओरिएंटेड रोल्स की एंट्री हुई। तो आज का शो उन खूबसूरत एक्ट्रेसेस के नाम होगा जिन्होंने अपने वर्सिटैलिटी और ग्रेस के साथ स्टीरियोटाइप्स तोड़े और बॉलीवुड हिस्ट्री में अपना नाम लिखा। और ग्रेस की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई दिमाग में आता है तो वो है माधुरी दीक्षित। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन को शुरुआत में फिल्म्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, वो तो माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री लेना चाहती थी, उनके पास डिग्री है भी, और वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। वैसे माधुरी ने कथक डांस भी सीखा हुआ है, 8 साल की ट्रेनिंग ली है, नो वंडर इसीलिए उन्हें डांसिंग क्वीन बुलाया जाता है। 1984 का वो समय था जब अबोध फिल्म से इन्होंने अपने करियर की, फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म तो चली नहीं, लेकिन माधुरी जी को क्रिटिक्स से बहुत तारीफें मिली। और फिर क्या था, उनकी तकदीर की गाड़ी निकल पड़ी और एक टाइम आया जब वो 3-4 फिल्में एक ही साल में रिलीज करती थी। आपको पता है जब हम आपके हैं कौन फिल्म आई थी ना, उस समय माधुरी की फीस सलमान खान की फीस से 2.75 करोड़ ज्यादा थी। वाह, मतलब एक्ट्रेसेस का भी एक जमाना हुआ करता था। खैर आइए इसी बात पर शो की शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के गाने के साथ, लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, मौसम का जादू। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर आज ये 90s की डीवाज पे स्पेशल एडिशन मेरे आने रुचि के साथ।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 1, let's start the fun!

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ. वेलकम बैक. आज के इस रेट्रो बॉलीवुड शो में मैं बातें कर रही हूं 90s के कुछ ऐसी डिवास के बारे में जिनके बिना हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री लिखी ही नहीं जा सकती थी. 90s में एक ऐसी भी एक्ट्रेस थी जिन्होंने ब्यूटी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और अपनी यूनिब्राउ पॉपुलर कर ली थी इन्होंने, जो अपने चेयरफुल आउटस्पोकन हैप्पी गो लकी नेचर के लिए जानी जाती थी. ऑफ कोर्स आप पहचान ही गए हैं, मैं बात कर रही हूं काजोल की. काजोल की फिल्मी दुनिया में एंट्री 1992 की बेखुदी फिल्म के साथ हुई थी, लेकिन उन्हें पहली कमर्शियल सक्सेस बाजीगर से मिली जब उन्हें पहली बार शाहरुख के साथ ऑन स्क्रीन पेयर किया गया था. और फिर क्या होना था, काजोल ने जब भी शाहरुख खान के साथ में फिल्में की हैं वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं. वैसे काजोल के लिए सबसे टफ किरदार गुप्त फिल्म का था, क्योंकि उन्हें एक मीन ग्रे शेड का जो कैरेक्टर था वो प्ले करना था. लेकिन इसी रोल के कारण शी बिकेम द फर्स्ट वुमन एवर टू विन अ फिल्म फेयर फॉर अ नेगेटिव रोल. जहां दूसरी एक्ट्रेसेस के लिंकअप की खबरें सामने आती रहती थी, वहीं काजोल इन सबसे काफी दूर थी. कॉन्ट्रोवर्सीज इन्हें छू भी नहीं पाती थी. इनफैक्ट गुंडा राज फिल्म की शूटिंग के दौरान शी स्टार्टेड डेटिंग अजय देवगन और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी. उनकी शादी भी अजय देवगन से ही हुई विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सीज. लोगों ने जरूर इनके अनलाइकली पेयरिंग को लेकर के काफी क्रिटिसिज्म जो था वो इन्हें दिया था, लेकिन इनके प्यार को किसी की परवाह नहीं थी. वैसे काजोल का लकी नंबर 5 है, इसीलिए 1995 में उनकी 5 फिल्म्स रिलीज हुई थी और सभी ब्लॉकबस्टर चाहे ना रही हो, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो आज तक भी हम याद करते हैं. तो इसी फिल्म से आपको अगला गाना सुनाती हूँ, लता मंगेशकर जी की आवाज में. हर लड़की ने अपने टीनेज में कभी ना कभी तो इस गाने पर डांस किया ही है. मैं हूँ रुचि आपके साथ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर.

0: Show.
1: क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेसेस के बारे में, या यूं कहें कि डीवाज के बारे में आज यहां पर मैं और आप मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। और जब हम डीवाज की बात करें तो श्रीदेवी जी का नाम सामने ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। श्रीदेवी जी को दिल से याद करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि माधुरी दीक्षित और जूही चावला की भी अगर कोई इंस्पिरेशन थी बॉलीवुड में तो वो श्रीदेवी जी ही थी। श्रीदेवी जी ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से लेकर के शाहरुख, सलमान तक ऑलमोस्ट सभी टॉप स्टार्स के साथ काम किया था। फिल्मों के साथ फैशन में भी वो काफी पॉपुलर थी। उनका आइकॉनिक चांदनी लुक मतलब फैशन का सीन ही चेंज कर गया था इंडिया में। सुना है डायरेक्टर यश चोपड़ा जी ने चांदनी के लिए पहले रेखा जी को ऑफर भेजा था, लेकिन सिलसिला फिल्म में उन्होंने चांदनी नाम का कैरेक्टर पहले ही कर लिया था तो उन्होंने मना कर दिया और खुद श्रीदेवी को उन्होंने ही रेकमेंड किया था इस रोल के लिए। और बताइए, ये जो एक कैरेक्टर था ये श्रीदेवी जी के लिए जैसे एक बेंचमार्क।

दुख बन गया था। एक बार यश जी अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे और रास्तों पर सिर्फ एक्शन फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए थे। इट वॉज देन जब उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ बदलाव लेकर के आना है और अब थोड़ा सा रोमांटिक फिल्में भी, रोमांटिक कहानियां भी लोगों को सुनानी है, दिखानी है। एंड दैट इज वेन उनके दिमाग में चांदनी फिल्म का ख्याल आया था। इस फिल्म की इतनी बात हो रही है तो चलिए इसी फिल्म का गाना आपको सुनाऊंगी, श्रीदेवी जी का गाना, ऑफ कोर्स 90s की वन ऑफ द बिगेस्ट डीवाज। लेकिन उसके पहले लम्हे फिल्म से हरिहरन और लता दीदी की आवाज में अगला गाना कभी मैं कहूं। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

束。वीकेंड क्लासिक रेडियो शो जारी है, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की डीवाज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। श्रीदेवी जी के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं के दो गाने अभी आपने सुने, और अब मैं 90s में सबसे क्विक सक्सेस जिन्हें मिली उनके बारे में बात करूंगी। नाम है इनका जूही चावला। जूही ने 1984 में मिस इंडिया का क्राउन जीता था। वैसे आप जानते हैं जूही भी कथक में ट्रेन थी, और वो भी 3 साल तक की इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। ऑल्सो क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर भी रही है ये। लेकिन जूही इन सब के कारण नहीं, बल्कि अपने कॉमिक रोल्स और चीयरफुल पर्सोना के लिए बहुत पॉपुलर थी। लेकिन फिर भी एक बार इनके और आमिर खान के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि इश्क फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने जूही चावला पर एक खतरनाक प्रैंक, एक बहुत ही बुरा मजाक किया था। जूही को यह बात अच्छी नहीं लगी थी और वो नाराज हो गई थी, और अगले दिन शूट पर ही नहीं आई, जिसके कारण उस दिन बहुत सारा लॉस हुआ था प्रोडक्शन टीम को। और आमिर खान काफी नाराज भी हो गए थे कि मैंने तो मजाक किया था, इसके ऊपर जूही इतना क्यों बुरा मान गई। कुछ दिन के बाद में इन दोनों के बीच में लेकिन ये प्रॉब्लम जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी, एंड ऑब्वियसली शूटिंग फिर से शुरू हुई। दैट्स हाउ हम ये फिल्म जो है इन दोनों के बीच की वो देख भी पाए थे, इश्क, वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स ऑफ दैट टाइम। वैसे जूही की आमिर और शाहरुख दोनों के ही साथ में पेयरिंग काफी पॉपुलर थी, जिसके लिए उन्हें काफी सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। लेकिन शाहरुख खान के साथ जब ये डुप्लीकेट फिल्म की शूटिंग कर रही थी प्राग में, उस समय शूटिंग के दौरान जूही चावला ने अपनी माँ को खो दिया था और उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा था। काफी हैवी लॉसेस हुए थे इस फिल्म के प्रोडक्शन टीम को, क्योंकि शूटिंग रोक दी गई थी। और सबसे ज्यादा अगर किसी पर इस चीज का फर्क पड़ा था तो वो शाहरुख खान थे, क्योंकि शाहरुख ने खुद कह दिया था कि जो भी लॉसेस हैं वो मेरी फीस में से काट दो, लेकिन इस फिल्म को जारी रखो। आई थिंक दैट इज वाई ही इज द किंग ऑफ बॉलीवुड। बट एनीवे, जूही चावला की बात हो ही रही है, 90s की एक बहुत ही बेहतरीन डीवा, तो जूही चावला और शाहरुख खान की ही फिल्म डर से सुपरहिट गाना आपको सुनाती हूँ, उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैंभरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडिज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
0: पिक्सी

0: Classic Radio Show.
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस डांस में अव्वल थी। अगर माधुरी और जूही कथक ट्रेन डांसर्स थे तो मनीषा कोइराला भरतनाट्यम और मणिपुरी ट्रेन डांसर। मनीषा अपनी टाइमलेस क्लासिक ब्यूटी और एलिगेंस के लिए पॉपुलर थी। एक्टिंग के पहले उन्हें डॉक्टर बनने की चाहत थी, लेकिन बहुत सारी मॉडलिंग जॉब्स ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। मनीषा ने बॉलीवुड के साथ साथ नेपाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था 1991 की फिल्म सौदागर के साथ में, और वो उस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म थी। वैसे शादी से पहले मनीषा वॉज क्वाइट पॉपुलर फॉर हर टर्बुलेंट अफेयर्स। इनफैक्ट अपने सौदागर फिल्म के को स्टार विवेक मुश्रान के साथ अफेयर की खबरें भी इनकी सामने आई थी, लेकिन बाद में इन दोनों का ये जो अफेयर था ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। लेकिन क्या आपको पता है, मनीषा कोइराला अपने जमाने की सबसे ज्यादा कमिटमेंट फोबिक एक्ट्रेस मानी जाती हैं। बहुत डर लगता था इन्हें रिलेशनशिप्स में घुसने से। चाहे ये अपनी रियल लाइफ में ऐसी थी, लेकिन फिल्मों में तो इन्होंने काफी रोमांटिक रोल्स भी निभाए हैं। फिलहाल मैं आपको मनीषा कोइराला की उस फिल्म से गाना सुनाती हूँ जिसे वो ऑलमोस्ट खो चुकी थी। मैं बात कर रही हूँ 1942 लव स्टोरी की। इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट में मनीषा फेल हो गई थी, लेकिन उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा जी से काफी रिक्वेस्ट करके दूसरा स्क्रीन टेस्ट करवाया था और तब जाकर वो सिलेक्ट हुई थी। आई मीन आई कैन नॉट इवन इमेजिन दिस फिल्म विदाउट मनीषा कोइराला। चलिए कुमार सानू की आवाज में ये गाना, सेलिब्रेटिंग 90s की डीवा मनीषा कोइराला। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं रुचि आपके साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की डिवास के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं, और जब 90s की कुछ खूबसूरत एक्ट्रेसेस की बात हो, डिवास की बात हो और ऐश्वर्या राय की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐश्वर्या इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। हम दिल दे चुके, सनम, गुरु, देवदास जैसी फिल्मों से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए, इस चीज़ का भी एक एग्जाम्पल उन्होंने सभी एक्ट्रेसेस, नॉट जस्ट एक्ट्रेसेस एक्चुअली, सभी लड़कियों के लिए सेट किया है। लेकिन क्या आप ऐश्वर्या की एजलेस ब्यूटी का राज जानते हैं? चाहे वो कितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडोर्स क्यों ना करती हों, लेकिन ऐश्वर्या राय आज तक भी सिर्फ आयुर्वेदिक ऑयल्स का इस्तेमाल करती हैं अपने चेहरे पर। वैसे ऐश्वर्या खुद भी एक डॉक्टर ही बनना चाहती थी। उनका बचपन से सपना था कि या तो वो डॉक्टर बने या फिर एक आर्किटेक्ट बने। बताओ बचपन में हम क्या क्या सपने देखते हैं और बड़े होकर के क्या बन जाते हैं। वैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सोचिए अगर ऐश्वर्या राय डॉक्टर बनती और आप ऐश्वर्या राय के पास में जाते पेशेंट बन करके, तो आप तो अपना दिल दे करके आ जाते वहां पर, तो अलग दिल के मरीज बन जाते आप, चाहे कोई और बीमारी लेकर के गए होते। एनीवे, ऐश्वर्या राय की बात यहाँ पर हो रही है तो और प्यार हो गया फिल्म से उदित नारायण जी का गाना सुनाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये गाना लेकर के आई हूँ। सुनिएगा वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा

0: गोल्ड प्यालेस, सुप्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिङ,
2: चिर परिचित, यहाँ श्रेष्ठ

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

बलि बोले न तीन चाहिए, न तीस चाहिए, न 300, न 3000, तो क्या चाहिए? बोल एक ही बर दे दो ना प्रभु, जब भी महल से बाहर निकलूं तो सर्वप्रथम आपका दर्शन द्वार पे करूं, और जब भी महल में अंदर प्रवेश करूं तो आपका दर्शन करके ही प्रवेश करूं। भगवान बोले उसका मतलब तो ये हुआ कि हम तुम्हारे चपरासी हो जाए। बलि बोले ऐसा मैंने कब कहा? बोले और तुमने क्या कहा है? आप कब आएंगे अंदर और कब आएंगे बाहर हमको क्या मालूम, और दोनों ही टाइम आप पहले हमको देखोगे। ये तो तभी हो सकता है ना जब डंडा लेके हम द्वार पर खड़े रहे, खबरदार घड़ी कमान, क्या बोलते हैं? ठीक है दिया, और कह दिया प्रभु ने प्रमाण पत्र, नित्यम दृष्टा सीमां तत्र गदापाणि अवस्थितम्। अपने महल के द्वार पर हाथ में गदा लेकर के मुझे खड़ा हुआ, तुम हमेशा देखोगे मेरा आशीर्वाद है।

0: मधुबन लागत सब वीरान, और भाव होए तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम। ये बहुत विचित्र बात है। बलि के द्वार पर गोविंद दरबान बन के रहे, अब तो वही बलि इंद्र है और प्रभु उपेंद्र के रूप में है। अगले मनमंत्र में ऐसा करने को बोले थे, अभी वही मनमंत्र चल रहा है जिसमें बलि इंद्र है और गोविंद उपेंद्र है। अच्छा, पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण।
1: जय श्री कृष्ण।
0: लक्ष्मी के रूप से, लक्ष्मी के साथ प्रभु नारायण रूप से वैकुंठ चले गए और दरबान रूप से बलि क्या रह गए। एक और बात, सत्यव्रत राजा की कामना की पूर्ति के लिए भगवान मत्स्य बनकर के पधारे और उन्होंने वेदों की सुरक्षा तो की ही थी, प्रलयंकारी संपूर्ण दृश्य राजा को दिखाया और प्रलयंकारी दृश्य दिखा करके उनकी शंकाओं का समाधान किया, उनको बहुत सुंदर उपदेश कर दिया। ध्यान से सुनने की बात है। एक और बात आपसे निवेदन करें, परमात्मा के 24वें अवतार जो हैं परीक्षित, ये सभी अद्भुत हैं, पर मनुष्य के जीवन से ज्यादा कनेक्शन रखने वाला जो चरित्र है वो तो दो है, रामावतार और श्री कृष्णावतार। एक दिन मैंने कहा था कि दोनों में अंतर तो नहीं है, वैसे इस प्रसंग पर भी बहुत चर्चाएं होती हैं विद्वानों में, कृष्ण 16 कला, राम जी 12 कला। अब पता नहीं वो मनोविनोद में ऐसा करते हैं कि वास्तव में ऐसा करते हैं। संतों की बात तो संत ही जाने माय डियर, उनकी महिमा कौन समझ सकता है। लेकिन ये बात नितांत सत्य है कि राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। भगवान राम 12 कला पूर्ण है और कृष्ण जो है वो 16 कला पूर्ण है, इसलिए कृष्ण ही परिपूर्णतम है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मुझे ऐसा लगता है कि राम भी 16 कला पूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते प्रभु राम ने अपनी 4 कलाओं को ज्यादा प्रकट नहीं किया। राम 16 कला पूर्ण न होते तो राम के नाम के आगे चंद्र कभी लगता ही नहीं, राम चंद्र, इससे वो 16 कला पूर्ण ही है, अंतर तो है ही नहीं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं राजन, इसलिए राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। कृष्ण का योगेश्वर चरित्र है। और एक और बात आपसे कह दूं, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में ज्यादा योगेश्वरता यदि कहीं परिलक्षित होती है तो वो केवल ब्रज की लीला। ब्रजमंडल में श्री कृष्ण 11 वर्ष और 56 दिन तक रहे बस। तो 11 वर्ष और 56 दिन जो कृष्ण का चरित्र है।

वो चरित्र बिल्कुल जीवन में उतारने योग्य नहीं है, यानी मनुष्य उतार भी नहीं सकता। 7 दिन का बच्चा पूतना को मार रहा है, यह मनुष्य की सामर्थ्य है ही नहीं। 6 महीने का बच्चा सक्तासुर से युद्ध कर रहा है, यह मनुष्य कर ही नहीं सकता। 1 वर्ष का बालक तृणावर्त को मार रहा है, यह मानव का कर्म नहीं है। 5 वर्ष का बच्चा अग्नि को पी रहा है, दामाग्नि, मुंह खोला पूरी अग्नि पी गई, यह मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य कर ही नहीं सकता। इसलिए कृष्ण ने ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन की जो लीलाएं की हैं, वो तो केवल चिंतन की लीला है, ध्यान की लीला है, जीवन में उतारने की लीला नहीं है, क्योंकि वो भगवान की लीला है, योगेश्वर की लीला है। हां, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित, मथुरा के बाद द्वारिका की लीलाएं जो गोविंद ने की, उसमें कुछ कुछ लीलाएं जीवन में उतारने योग्य हैं, सब तो वो भी नहीं, लेकिन रामचरित्र का तो संपूर्ण प्रसंग जीवनोपयोगी है, क्योंकि राम जी ने रामचरित्र करके मनुष्यता का पाठ पढ़ाया, भगवत्ता नहीं दिखाई। यही तो अंतर है राम और कृष्ण में। राम से जब भी किसी ने पूछा आपका परिचय, तो राम जी बोले, दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र, संतों के चरणों का दास, मैं राम। और कृष्ण ने अपने जीवन में 50,000 बार से ज्यादा कहा है, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। राम ने कभी कहा नहीं, कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं, क्योंकि योगेश्वर का चरित्र है, यह पूर्ण ईश्वरीय चरित्र है। पर राम जो ईश्वर हैं, उन्होंने मानवता को दिखाया है, ईश्वरता को छुपाया है, यही दोनों में अंतर है। वस्तुतः राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। शास्त्र दृष्टि से तो यह बात माननी चाहिए ही, आज के परिवेश में तो यह बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हां, अंतर तो अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है, कम से कम आज की दृष्टि में। ठीक है, हम कभी कमरे में बैठे हैं, कोई शास्त्र की चर्चा चल रही है, तो एक अलग बात है। भगवान राम ने जिस वंश में अवतार लिया है, उसे सूर्य वंश कहते हैं। और मैं जल्दी जल्दी आपको सूर्य वंश बता के अयोध्या चलूंगा। नारायण के बेटे ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बेटा मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के सूर्य हुए। सूर्य का नाम है विवस्वान, और विवस्वान सूर्य के जो बेटा हुए, उन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं। इन्हीं के वंश में बेटा नभग हुआ, नभग का नाभाग हुआ, नाभाग के अम्बरीश हुए। एकासी व्रत करते थे, दुर्वासा जी परीक्षा लेने आए और परीक्षा में अम्बरीश पास हो गए। इस वंश में युवनाश हुए, युवनाश के मानधाता हुए, मानधाता की 50 कन्याएं सौभरी को ब्याई गई। त्रिवंदन हुए, फिर त्रिशंकु हुए, फिर हरिश्चंद्र हुए, आगे चलकर बाहुक हुए, जिनके बेटा सगर हुए। सगर की 2 पत्नियों में एक के एक बेटा हुआ, असमंजस एक के मांसपिंड हुआ, जिसको क्रोध में आके टुकड़े कर दिए और 60,000 हो गए। असमंजस की शादी हुई, पुत्र का नाम है अंशुमान। पर 60,000 जो सगर पुत्र हैं, कुछ उद्दंड हैं। असमंजस घर से निष्कासित कर दिए गए, क्योंकि वो पागलों की स्मृति में रहते। सगर के इन 60,000 पुत्रों ने भगवान कपिल का अपमान किया, क्योंकि इंद्र ले गए थे घोड़ा चुरा के यज्ञीय पशु, और भगवान कपिल के आश्रम पर बांधकर वो अंतर्धान हो गए। सगर के पुत्रों ने उनको चोर समझा, मारने दौड़े, कपिल के नेत्र खुलते ही सब जल के राख हो गए। ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में जलकर जो नष्ट होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, ऐसा लिखा है। अंशुमान ने बहुत प्रार्थना की, ऋषि कपिल और महात्माओं ने कहा, वामन भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में गया और उसको धोकर के जल कमंडल में जो ब्रह्मा ने रखा, वही जल इन सगर के पुत्रों की भस्मी पर डाल दिया जाए तो मुक्त हो जाएंगे। अब गंगा माता को ब्रह्मा के कमंडल से कौन लेके आए? अंशुमान ने तप किया, गंगा न आ सकी।
अंशुमान के पुत्र महाराज दिलीप हुए, दिलीप ने तप किया, गंगा को न ला सके। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, गंगा माता आई, ब्रह्मांड कटा का भेदन करके सबसे पहले तो ध्रुव लोक में आई, सप्तर्षि मंडल पर आई, फिर शिवजी की जटा में पधारी और शिव जटा से सुमेरु पर गिरी, सुमेरु से हिमालय पर आई और गंगोत्री से प्रारंभ हो गई। वहां बैठा तो एक महात्मा, ये क्षत्रिय महात्मा थे, नाम था इनका जहनु मुनि राजर्षि। माता गंगा जी की धवल धारा तीव्र गति से आ रही थी, कलकल कलकल करती हुई। महात्मा जी की झोपड़ी उधर थी, कुटिया से वो उड़ा दी, कुटिया बह गई। जहनु बोले अच्छा, सो बाबा ने ओक लगाई और गंगा को पी गई। भगीरथ ने पीछे देखा तो गंगा जी है ही नहीं, माता कहां गई। जहनु बोले प्यास लगी थी सो हम पी गए। प्रार्थना करी, अब जहनु ने सोचा गंगा को मुख से निकालूं तो उच्छिष्ट हो जाएंगी, अब झूठी गंगा से फिर अभिषेक कैसे होगा, इसलिए ऋषि जहनु ने अपने कान में से गंगा निकाल दी। कोई कहते हैं जंगा फाड़ के निकाल दी, और गंगा माता आ रही है। अब देखो ध्यान से सुनने की बात यह है कि गोविंद के चरणों से निकलने की वजह से गंगा माता का एक नाम है विष्णुपदी, विष्णुपदी। जहनु मुनि के द्वारा प्रकट करने से नाम जाह्नवी भी है, शिव जटाओं में होकर पधारी तो नाम जटाशंकरी भी है, बड़ा पवित्र नाम है।

गंगा गंगा गंगा इस नाम को यदि 400 कोस की दूरी से 1200 किलोमीटर की दूरी से कोई पुकारता है, पाप से मुक्त होकर वह विष्णु लोक को प्रस्थान कर जाता है। ऐसा गंगा जी का स्वरूप है। बोली गंगा माता की। अरे सुनो, भगीरथ जी लेके आए ना, इसलिए इनका नाम भागीरथी भी हो गया। अलकनंदा भी नाम है, सुरसरी भी उनका नाम है, अनेक नामों से उनको पुकारा जाता है। भगीरथ के बेटे सुरत हुए, सुरत के बेटे सुदास हुए, उन्हें कलमाशपाद भी कहते हैं। और इन्हीं सुदास महाराज के यहां पर आगे चलकर के खटवांग हुए,

खटवांग के बेटियां दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के पुत्र रघु हुए। उनके बेटियां फिर दिलीप हुए, रघु के पुत्र दिलीप जिनको प्रथुश्रवा कहते हैं, और उनके पुत्र हुए अज, और अज के ही पुत्र कहलाए महात्मा दशरथ। कैसा निर्मल जीवन, कैसी अद्भुत उनकी मनस्थिति। अयोध्या के सम्राट हैं महाराज दशरथ, और हम लोग सब अवध में प्रवेश करने जा रहे हैं। दशरथ का मतलब होता है दसों दिशाओं में जिनका यश है, दसों दिशाओं में जिनके रथ को आवाद गति से चलने की सामर्थ्य प्राप्त है, वे महाराज दशरथ हैं। अवध के तो वे सम्राट हैं। अयोध्या, बहुत ध्यान देना, असल में तो अयोध्या का मतलब होता है जहां कभी युद्ध नहीं होता, उसी को अयोध्या बोलते हैं। अवध का मायने होता है जहां कभी किसी निरपराध का वध नहीं किया जाए, उसी को अवध कहते हैं। लेकिन यहां महात्मा दशरथ के मन में आजकल थोड़ी चिंता है। तीन भार्या हैं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी केकई, लेकिन मन में बड़ी चिंता है। और मन में इतनी चिंता हो ही न बिमल विवेक उर गुरुसन कियउ दुराव। मन में कोई टेंशन आवे तो पड़ोसी को तो कभी बताना ही नहीं है, लेकिन गुरुजी से कभी छुपाना नहीं। गुरुदेव से तो बताना ही चाहिए, उनसे कैसे छुपा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आइए हम उसका चिंतन करें।

क्या मेरे बाद मेरे घर में कोई तर्पण करने वाला भी न होगा? गुरुदेव, क्या सूर्य वंश का मैं अंतिम राजा कहलाऊंगा? आप जैसे महापुरुष रूपी कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाले के जीवन में दारिद्र्य नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज मुस्कुराकर के बोले, चार पुत्र होंगे, हो ये हैं सुतचारी। क्योंकि मुझे मालूम था कि आपके घर परात्पर ब्रह्म अवतरित होने वाले हैं, तभी तो मैंने पुरोहित कर्म स्वीकार किया था रघुवंश का, अन्यथा यह कोई उत्तम कर्म तो नहीं है। और महाराज, आपके घर चार पुत्र हो, फिर भी हमें सत्कर्म तो करना चाहिए। बड़ी निष्ठा से पुत्र कामेष्टि प्रारंभ हुई और अंतिम आहुति जब डाली गई तो साक्षात अग्निदेव देवताओं के दूत के रूप में प्रकट हो गए। इसमें चरु है, महाराज दशरथ अपनी तीनों भार्याओं को इसे प्रदान करें तो उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ देव ने उसमें आशीर्वचन कहा, अपने चरु का एक भाग उन्होंने श्री कौशल्या जी को प्रदान किया, दूसरा भाग महारानी कैकेयी जी को दिया। कहते हैं तीसरा भाग सुमित्रा जी को प्रदान किया था। ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई, चील पक्षिणी, और महारानी सुमित्रा जी के हाथ से चरु को लेकर अनंत आकाश में चली गई। केसराचल नाम के पर्वत पर वृक्ष की डाली पर बैठी, वहां नीचे बैठी थी माता अंजनी। पक्षिणी को कुछ बोलने का मन हुआ, उसके मुंह से वो चरु निकलकर माता अंजनी के हाथ में गिरा। अंजनी ने उसे शिव प्रसाद समझकर के स्वीकार कर लिया। इसी से श्री हनुमंत महाराज का प्राकट्य हुआ, हनुमान जी प्रकट हुए। लेकिन लिखा है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। और लास्ट में लिखा है, पवन तनय संकट हरण। हनुमान जी शंकर सुवन हैं, फिर केसरी के पुत्र हैं, और कहते हैं पवन तनय, तनय माने बेटा, तीन तीन पिताजी, शंकर जी, केसरी जी और पवन जी। कहते हैं शिव तनय तो इसलिए है वो कि शंकर ही हनुमंत के रूप में अवतार लिए हैं। अवतार होने के नाते वो शिव तनय हो सकते हैं। और पवन तनय क्यों? बोले पवन ने ही तो हनुमान को पाला है, और पालने वाला पिता तो जन्म देने वाले पिता से भी प्रथम वंदनीय होता है। नंद बाबा का स्थान किसी भी मायने में वसुदेव से 21 है, 19 नहीं है, तो पवन तनय है। और केसरी की पत्नी तो अंजना है ही, उसमें से किसी को आपत्ति होनी क्यों? माता सुमित्रा ने कहा, मुझे तो पुत्र असंभव, क्यों? चरु तो पक्षी ले गया। माता कौशल्या बोली, अभी हमने चरु भक्षण नहीं किया, उसका आधा भाग तुम ले लो। चलो, कौशल्या जी ने अपना चरु प्रदान किया, मां सुमित्रा पा गई। केकी बोली, मैंने भी अभी पाया नहीं, चलो आधा हमारे से भी ले लो, उसे भी पा गई, तो दो बार पाया ना, इसलिए उनको दो पुत्र हुए। तो सुमित्रा माँ ने एक बड़ी अच्छी बात कही, आप दोनों ने अपना स्वरूप प्रदान करके मुझ पर कृपा की है, मैं आपको वचन देती हूं, यदि मुझे दो पुत्र हो गए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आपके दोनों पुत्रों की सेवा में समर्पित कर दूंगी, यह मेरा वचन है पक्का। इसलिए सुमित्रा का बड़ा बेटा राम की सेवा में और छोटा बेटा भरत की सेवा में हमेशा रहा। धीरे धीरे समय निकल रहा है। अयोध्या चारों तरफ से सुंदर है, जहां कभी किसी निरपराध को मारा नहीं जाता उसको अवध कहते हैं, जहां कुत्ते की बात भी बड़े गौर से सुनी जाती है उसको अवध कहते हैं। अयोध्या जैसी पवित्र भूमि पूर्व के राजनीतिक लोगों की मूर्खतापूर्ण भूलों की वजह से
भगवान राम की पवित्र जन्मस्थली विवादास्पद होती चली गई। कितना बड़ा दुर्भाग्य से हिंदू राष्ट्र का। अयोध्या जहां परमात्मा राघवेंद्र पधारे, प्रत्येक हिंदू के प्राण प्रभु राघवेंद्र का जहां प्राकट्य हुआ, उन हिंदुओं के ही राष्ट्र में, हिंदुओं के ही परमादरणीय, हिंदुओं के ही प्राण पूर्ण देव राम की जन्मस्थली पर हम एक मंदिर नहीं बना पाते, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन का और हो क्या सकता है। आप जरा विचार करके देखें। पूर्व के राजनीतिक लोगों की मूर्खतापूर्ण ऐतिहासिक भूलों ने इस राष्ट्र की जो दुर्गति की है, उस दुर्गति से इसको बचाने का संकल्प तो हमें लेना ही होगा। इसके लिए सतत प्रयास करने होंगे। जागरूकता बढ़ी है पर संतोष लायक नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अयोध्या में आज आनंद की वृष्टि हो रही है, आनंद का वर्षण हो रहा है। धीरे धीरे धीरे धीरे आया चैत्र मास। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार परमात्मा श्री राघवेंद्र, परमात्मा श्रीमन नारायण, देखो नारायण स्वयं कौशल्यानंदन राम के रूप में पधारे और विष्णु स्वयं केकी नंदन भरत के रूप में पधारे। शेषनाग जी स्वयं सुमित्र नंदन लक्ष्मण के रूप में पधारे और ब्रह्मांश ही साक्षात शत्रुघ्न जी महाराज हैं। लेकिन माता ने जब दर्शन किया, चारों तरफ से महल बंद है। कैसा संकच

शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण माता कौशल्या के भवन में प्रकट है। चार भुजा है, मैया ने उनका दर्शन किया। पुत्र होता क्या? राम जी बोले, हम तो जहां भी पुत्र बन करके जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, माता आप मेरे को पुत्र बोल दो, मैं आपको मां बोल दूं। मैया बोली, यहां नहीं चलेगा, थोड़ी मनुष्य लीला करनी है, थोड़ा सा आपको ये दो हाथ हटाने ही होने। राम जी ने दो हाथ हटा लिए। अब तो अच्छा माता, अब तो मैं पुत्र बन गया। मैया बोली, 20 फुटा का बेटा, इतना लंबा पुत्र होता क्या? छोटे बन जाओ ना। राम जी छोटे हो गए। अब तो माता मैं पुत्र बन गया ना, अब तो द्वार खोलो, अब बहुत बड़ी भीड़ लगी है, बहुत माताएं, बहुत बहनें, बड़े संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा मुनिंद्र मेरे दर्शन के लिए आएंगे सब, आप द्वार खोलिए। मैया बोली, द्वार खोलूं और भीतर सब लोग आएंगे तो कहेंगे ये दुशाला वाला बेटा कहां से हुआ, कपड़े तो उतारो। राम जी बोले, बहुत परेशान करती है माता, पहले कहती है हाथ हटाओ, फिर कहती है छोटे हो जाओ, अभी बोलती हो वस्त्र ही उतार दो। मैया बोली, बालक जब जन्म लेते हैं तो नंगा ही होता है, तुम्हारी तरह दुशाला पहन के नहीं आता है। माता पुनि बोली, सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनुपा। सो राम जी नन्हे से निर्वस्त्र बालक शिशु बन गए। पलना में मैया ने सुलाया, इशारे से बोले, अब द्वार खोले, सब लोग दर्शन करने आएंगे। मैया बोली, रो तो सही। बोले, रोमे काहे को? बोले, बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, आप तो बूढ़े बाबा की तरह सो रहे हो। तो सुनने

सो प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। अब आकाश मंडल में आज सूर्य की खुशी का तो ठिकाना नहीं है, क्योंकि सूर्य वंश में मेरे प्रभु पधारे, सूर्य वंश में आए हैं रघुनंदन। चंद्रमा ने थोड़ा सूर्य से कहा, आगे चलो ना, सब अपन को भी दर्शन करना है। हाँ, सूर्य नारायण बड़े चुपचाप बैठे रहो, मैंने